एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं। बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक क्यों।

जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं। ओ अपने परछावे तो, ओ अपने परछावे तो आपे डरी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम। की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे जिस्म लड़ी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा,

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। अब
1: वाह,
0: तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर
1: क्या बात है।
0: रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, रुखसत के वक्त

0: लिए।
1: वाह जी,
0: अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर
1: वाह जी,

0: बीते हुए लम्हों की कसक साथ
1: जो इत्थे दे नौजवानां अते पंजाब दे भविख दे लई
0: तो होगी
1: बहुत वड्डा खतरा है। जथेदार गड़गज शुक्रवार नूं
0: ख्वाबों ही में हो जाए मुलाकात तो होगी।

0: जावे ता मिट्टी है, डिग जावे ता सोना है।
1: क्या उलथा, मैं कहना जी बिल्कुल ब्रांड न्यू गजल हो गई जी। तो दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। वाह,
0: मैं वो होया था ये भी, तू ये देखो निजा फाजली ने धोखा हो गया।
1: अच्छा जी,
0: धोखा किदा हो गया? मैं तो डर दे ने दसिया नहीं वे उर्दू तो ट्रांसलेट कीती आ, ते तीन चार हफ्ते बाद एक होर दुआबा रेडियो उथो पंजाब रेडियो तो प्रोग्राम हुंदा सी, उथे एक कुड़ी ने मेरी गजल कह के गाती।
1: नहीं परे हुण तुहाडी गजल हो चुकी है, क्या बता। वाह वाह वाह, बहुत ही बाग मालू लथा है जी। ते एक ना इधरों पर्चियां आ रही ने स्टेज दे कोल मेरे कोल, एच एस मिठू बाई जी ते गुरी मान और आंदी है, वो कहते मेरे दिल की गल भी यही है। वह लंघांगे गली छन छन वाले, कहते दो बोल जरूर हो जाण, ते जो पुरानियां यादा भी सांझियां हो रही ने हिमो भाई वाली
0: जी। जी
1: जी,
0: मिलदी नहीं मुस्कान भी, होठी सजा मिलदी नहीं मुस्कान भी, होठी सजा दिल ता बहुत ही कर दाए मेरा मिलन आउण, दिल ता बहुत ही कर दाए मेरा मिलन आउण नू, किन्ना हने है के एक रोशन जमीर को, किन्ना बने है के एक रोशन जमीर को, बचिया नहीं चराग भी कर विच जगों, बचिया नहीं चराग भी कर विच जगों नू, तेरी एक दिन ओ आखरी शेर मेरे जेन चो निकल गया शमी जी।
1: जी जी जी जी जी, ओ छनन छनन वाला सी शायद।
0: लंगा तेरी भी गली एक दिन छनन छनन,
1: वाह।
0: लंगा तेरी भी गली एक दिन छणन छणन,

जिंदगी दे गुड़े संगा तो क्यों बेमुख हो गई है, बच्चियां दे नाल खेडन वाली हाय किथे खो गई है। जिंदगी दे गुड़े रंगा तो क्यों बेमुख हो गई है, बच्चियां दे नाल खेडन वाली हाय किथे खो गई है। सौन महीने विच भी खबरे नचदी कातो नहीं, की दिल विच दबे आए कुछ दसदी कातो नहीं।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले,

सदा उसकी ही मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।